0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यूम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो
2: लाइफ ain't no joke man no y'all know what it is yeah bitch boy on this one.

0: और मैं पाचो
1: ईटी यूनियो और रेडियो और रेडियो
0: और रेडियो रेडियो रेडियो रेडियो
2: Biak nga, Judah, Kapela Vo, Meyuda, Rap Knowledge, The Akbar, Souls of Africa,

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: डन मिले से एंटरटेनमेंट स्मार्ट फिनर मम्मीज बॉय ट्रैड निगर चे या
3: रोजी बबीज किला
2: ए बापाची पुअर रोड अमीना बापाची पुअर रोड अमीना बापाची पुअर रोड फॉर हिज लव एंड ग्रेस अपॉन योर लाइफ बॉय होला

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो इटीविनो और रेडियो
2: ये तो उतरो मन उतरो यो यो उतरो मन